0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
1: Ayo, G-Funk.

सो एक बार फिर थोड़ा सारे का निघा स्वागत प्यारे दोस्तों, तुम जुड़े हो एस बी एस के पंजाबी प्रोग्राम के नाल जिहड़ा इस वेले लाइव चल रहा जी एस बी एस साउथ एशियन के उत्ते, और मैं थोड़ा मेजबान पत्रस मसी। सोमवार तो शुक्रवार असी इस तरीके नाल लाइव जुड़ते हैं 4 to 5 PM, कहने का भाव कि 1 घंटे के वास्ते, और फिर दोबारा इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण होंगे रात 9 PM एस बी एस रेडियो 2 के उत्ते। तो प्रोग्राम दे विच हुण साडी अगली पेशकारी का वेला है, तो गल करांगे जी फुटबॉल दे महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप दी। फीफा वर्ल्ड कप जिस दे उत्ते इस वक्त पूरे दुनिया दे फुटबॉल प्रेमियां दीयां नज़रां लगियां होईयां ने। जिथे जिथे भी फुटबॉल नूं प्यार करन वाले, चाहे वह खिडारी ने चाहे वह प्रशंसक ने फुटबॉल दे नाल जुड़े हुए, सब दीयां नज़रां इस महाकुंभ दे उत्ते लगियां होईयां ने। और 18वें दिन इस फीफा कप दे विच की कुछ वापरिया, किहड़ियां किहड़ियां टीमां आमणे सामणे होईयां, खास तौर पर कनेडा अते साउथ अफ्रीका का जिहड़ा मैच सीगा उस दे विच की कुछ वापरिया है, और कनेडा की परफॉर्मेंस किस तरीके दी रही है, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस किस तरीके दी रही है, वह वेरवा तुहाडे नाल असीं सांझा करन वास्ते जा रहे हैं। पर जेकर तुहाडी भी कोई याद, तुहाडी भी कोई एक असीं कह सकते हैं कि तुहाडा कोई तजर्बा फीफा वर्ल्ड कप दे नाल जां फुटबॉल दे नाल जुड़िया होया हैगा, तां साडे नाल जरूर सांझा करियो। असीं उह पढ़ के अपने होर सुनन वालिआं दे नाल जरूर साझा करांगे। साडा फोन नंबर 0439-799-767 तुहाडे अजिहे प्यार भरे सुनेहां दा हमेशा ही इंतजार करदा है। तो आओ सुनदे हां फीफा वर्ल्ड कप दे 18वें दिन दा हाल।

कैनेडा ने साउथ अफ्रीका नू हरा के रचिया इतिहास। पहली बार राउंड ऑफ 16 विच दाखला। स्टॉपेज टाइम विच ओ पल आया जिसने इतिहास लिख दिता। कैनेडा ने आखिरी मिनटा विच गोल करके साउथ अफ्रीका दे सुपनिया नू तोड़दे हुए वर्ल्ड कप इतिहास विच अपनी पहली नॉकआउट जित दर्ज की। फीफा वर्ल्ड कप दियां मुख सरगर्मियां दे नाल विश्व कप डेली अपडेट

0: सो दोस्तों फीफा मैचों का सीधा प्रसारण तुसी अपने घर बैठ के एस बी एस ऑन डिमांड उत्ते एस बी एस दे उत्ते देख सकते हो। सो फीफा वर्ल्ड कप दे नाल जुड़े कुछ होर रोचक तत्थ तुहाडे नाल असीं जरूर सांझे करना चाहवांगे कि जिहड़ा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ये 23वां ते मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप है और ये फीफा दे मैंबर जिहड़े देश हैगे राष्ट्रीय टीमों दे विचकार हर साल हर चार साल के बाद होने वाली जिहड़ी मर्दां दी इंटरनेशनल सॉकर चैंपियनशिप हैगी है। मौजूदा जिहड़ा टूरनामेंट चल रहा जी ये 11 जून 2026 शुरू होया सीगा और 19 जुलाई नूं ये खत्म होना है और इसकी जिहड़ी मेज़बानी है 2002 तो बाद ये पहला वर्ल्ड कप है जिसकी मेज़बानी एक तो वध जिहड़े है वो देश कर रहे हैं। 3 मुल्कां दे वलों इसकी मेज़बानी की जा रही है और 16 शहरां दे विच इसका आयोजन हो रहा है। 11 शहर जिहड़े अमरीका दे विच है, 3 मैक्सीको दे विच और 2 कनेडा दे विच। और जितों तक मैक्सीको की गल हैगी है, मैक्सीको 1970 और 1986 तो बाद टूरनामेंट की मेज़बानी इस तो पहला भी कर चुका है और मैक्सीको हुण तीजी बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी कह लिए जा सह मेज़बानी जिहड़ा है को होस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड कप नूं। और अमरीका इस तो पहला 1994 दे विच वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है और जबकि जिहड़ा कनेडा है वह पहली बार इस टूरनामेंट की मेज़बानी कर रहा है। सो ये कुछ रोचक तत्थ रोचक जानकारियां तुहाडे नाल असीं सांझियां करना चाहुंदे सां फीफा वर्ल्ड कप नूं लैके। हाल दी घड़ी वेला हो रहा एक छोटे जिहे ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद जब वापस आवांगे तां चलांगे पंजाब दे वल नूं, जाणांगे पंजाब दे जिहड़े मौजूदा हालात की हैगे ने पंजाबी डेरे दे राहीं। पर लैंदे आ इक उस तों पहलां छोटा जिहा ब्रेक।
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर।
2: SBS हिंदी के डेली क्रिएटिव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 29 जून 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहद खुश होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों आज आप मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए, मुझे ये बताइए कि ग्रोसरी शॉपिंग करते समय आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है। 04397997667 हमारा नंबर है। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, इसके बाद बात करेंगे मध्य पूर्व में फिर बढ़ते तनाव की और फिर प्रस्तुत करेंगे भारत की खबरें इंडिया रिपोर्ट में। इसके बाद होगी 1 जुलाई से टैक्स व्यवस्था में आने वाले नए बदलावों की चर्चा और बाद में सुनेंगे कैसे फीफा विश्व कप में भारतीय मूल के खिलाड़ी निशान मेलुपिल्ले युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। अंत में बजाएंगे आपकी पसंद के गीत, तो कोई गीत सुनना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइए 04397997667 पर। वरना मैंने आज आपसे पूछा है कि भाई ग्रोसरी शॉपिंग करते समय आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, जवाब आप 04397997667 पर ही दे सकते हैं। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया और वनुआतु ने पहला आपसी रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को वनुआतु का प्रमुख सुरक्षा साझेदार माना जाएगा। हालांकि समझौते की शर्तें ऐसी हैं कि वनुआतु चाइना के साथ अपने संबंध भी जारी रख सकेगा। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वनुआतु में चाइना की वित्तीय मदद से होने वाली परियोजनाओं पर उसे वीटो अधिकार मिले, लेकिन वनुआतु ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर हालिया जनमत सर्वेक्षण के अनुसार पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट उनके नेशनल प्रेस क्लब में दिए गए विवादास्पद संबोधन के बाद आई है। न्यूज पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ लेबर पार्टी 33% समर्थन के साथ मामूली बढ़त पर लौट आई है, जबकि वन नेशन का समर्थन 2% घटकर 29% रह गया है। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि सेनेटर पॉलिन हैंसन की लोकप्रियता रेटिंग 10 अंक गिरकर न्यूट्रल से -10 पर पहुंच गई है। वहीं विपक्षी गठबंधन का समर्थन घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 17% पर आ गया है। विपक्ष नेता एंगस टेलर ने स्वीकार किया कि गठबंधन को अभी काफी काम करना बाकी है। दूसरी ओर रिटायरमेंट के लिए सुपर एनुएशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई अब भी संदिग्ध निवेश योजनाओं के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये चेतावनी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन ने फर्स्ट गार्जियन और शील्ड फंड्स के ध्वस्त होने के बाद जारी की। इन फंड्स में निवेश करने वाले मेहनतकश ऑस्ट्रेलियाई अत्यधिक जोखिम वाले इलिक्विड निवेशों और कथित धोखाधड़ी का शिकार हुए। इस मामले में लगभग 11,000 लोगों को कुल $1.1 अरब का नुकसान हुआ है। ऊंचे मुनाफे का लालच देकर कई लोगों को पारंपरिक सुपर फंड छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद कई निवेशकों की जीवन भर की पूरी बचत डूब गई। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों में बच्चों के टीकाकरण की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फर्स्ट नेशंस बच्चों के टीकाकरण में आने वाली बाधाओं और सहायक कारकों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दूर दराज इलाकों से परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और सीमित समय और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सेवाओं की कमी जैसी व्यावहारिक चुनौतियां प्रमुख कारण बन रही हैं। और अब बात फीफा विश्व कप की। ब्राजील और जापान के बीच प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को लेकर रोमांच अब चरम पर है। ये मैच ऑस्ट्रेलियाई समय के अनुसार मंगलवार तड़के 2:30 बजे खेला जाएगा। ब्राजील रिकॉर्ड 6ठा विश्व कप जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि जापान 4 प्रयासों के बावजूद अब तक विश्व कप के नॉकआउट चरण में एक भी मैच नहीं जीत पाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद इस सप्ताह 33 लोगों को बचाया जा सका। हजारों लोग अब भी लापता बताए गए हैं, जबकि और जीवित लोगों को खोजने का समय तेजी से कम हो रहा है। बुधवार को आए इन दो भूकंपों में मरने वालों की संख्या 1400 से ऊपर आई है। सैकड़ों आफ्टरशॉक्स ने नुकसान को और बढ़ा दिया है और लोगों में अब भी डर बना हुआ है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गबन मामले की जांच तेज हो गई है। आशंका जताई गई है कि ये चोरी करोड़ों रुपयों की हुई है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 80 लाख भारतीय रुपयों को बरामद करने का दावा किया गया। जांच में सामने आया है कि दान गिनने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गर्मी से जूझ रहे भारत में लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून तक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, लेकिन 1 जुलाई से गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। इसी के साथ 29 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं मध्य पूर्व में एक बार फिर से बढ़ते तनाव की। अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों द्वारा फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होने की नई खबरें सामने आ रही हैं, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या है ये आरोप प्रत्यारोप, क्यों शुरू हुई है ये फिर से सैन्य कार्रवाइयां और क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में, आइए सुनते हैं नताशा कॉल की इस रिपोर्ट में।
3: अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने तक चली लड़ाई रोकने पर सहमति बने अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने इस नाजुक युद्ध विराम को एक बार फिर खतरे में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं लेबनान और गाजा में भी हिंसा जारी है, जिससे पूरे मिडल ईस्ट में स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। इस महीने अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी संघर्ष पर विराम लगाने पर सहमति जताई थी, लेकिन मिडल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए हुए समझौते अब बढ़ते दबाव के बीच फिर से परीक्षा की घड़ी में हैं। सप्ताहांत में अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हमला करने का आरोप लगाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। इनमें निगरानी प्रणाली, वायु रक्षा ठिकाने और ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित ड्रोन सुविधाएं शामिल थीं। तहरान का कहना है कि ये हमले हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वहीं वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का प्रभाव और दबदबा दिन ब दिन कम होता जा रहा है।
4: We need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE is moving oil through its pipeline that it's expanding. The Saudi Arabia is moving oil through its pipeline that it's expanding. We will create alternatives to our basing posture there. We will harden some. Some may go underground. Others will move. So this leverage that Iran thinks it has now is diminishing faster and faster, literally every week as we speak.
3: एक बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कमर्शियल समुद्री यातायात को फिर से सामान्य करना पूरी तरह तेहरान की जिम्मेदारी है।
5: تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
3: اس نئے تناؤ کے باوجود کمرشل جہاز اب بھی سٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر گزر رہے ہیں. युद्ध विराम का उद्देश्य केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में हाल के दिनों में बढ़ते तनाव को कम करना भी था. हालांकि लेबनान में अमेरिका समर्थित ढांचा समझौता पहले से ही दबाव में है. हिजबुल्ला ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है, जबकि इजरायली सैनिक अब भी सदर्न लेबनान में तैनात हैं. इसराइल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी

0: local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को. और अब आइए करते हैं रुख सबसे पहले भारत से आने वाली खबरों का, जिन्हें लेकर के आते हैं हर सोमवार को हमारे लिए मनन कुमार. इसी के साथ मैंने आपसे पूछा है कि भाई कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बता दें मुझे, मैं आपके लिए उसको लेकर के हाजिर हो जाऊंगी. 04397997667 हमारा नंबर है.
6: SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार. पेश हैं भारत के समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर क्षेत्र में अफ्रीका के निकट स्थित सेशल्स गणराज्य के 3 दिन के दौरे पर हैं. रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी की बातचीत के बाद भारत और सेशल्स ने 19 समझौतों और पहलों की घोषणा की. इससे रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ेगा. रविवार को सेशल्स के राष्ट्रपति हरमनी की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया.
7: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट अवर शेयर्ड कमिटमेंट to a safer and more secure region. I met President Albany Topaz this morning and reviewed the remarkable progress achieved in our partnership. We also discussed our shared vision for the future. Our vision is captured in the idea of Mahasagar. Mutual and holistic advancement for security and growth across region Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
6: इसके पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन में जायंट टॉर्टाइज एनक्लोजर में भी गए, जहां उन्होंने एक पौधा लगाया. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके जायंट टॉर्टाइज एनक्लोजर के दौरे को लेकर पाखंडी हरकत करने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार की ग्रेट निकोबार परियोजना भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आवासों के लिए खतरा पैदा करती है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जहां एक ओर मोदी ने सेशल्स की यात्रा के दौरान अल्दाब्रा जायंट कछुए को सम्मान दिया, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार एक ऐसी परियोजना को आगे बढ़ा रही है जो लेदर बैग कछुओं जैसी प्रजातियों के आवास को नष्ट कर देगी, हजारों कोरल कॉलोनियों को खत्म कर देगी और द्वीप की अनूठी जैव विविधता को बर्बाद कर देगी. भाजपा सरकार बेशक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को सफलतम बता रही हो, लेकिन कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख के माध्यम से मोदी सरकार पर गजा में इसराइल की सैन्य कार्यवाही के रुख को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि इस आयोग की अगुवाई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की कार्यवाही का मकसद गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गजा को लेकर भारत की मौजूदा नीति विदेश नीति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी आलोचना की और कहा कि लगातार बढ़ते सबूतों और कानूनी कार्यवाहियों के बावजूद दुनिया इस संघर्ष को रोकने में नाकाम रही है। भारत को ऐतिहासिक रूप से फलस्तीन का समर्थक बताते हुए उन्होंने लिखा कि इस नीति से पीछे हटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार चुप्पी नैतिक और रणनीतिक दोनों नजरियों से सही नहीं ठहराई जा सकती है। श्रीमती गांधी के लेख का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा चुनिंदा मुद्दों पर ही आवाज उठाती है।
8: सोनिया गांधी स्पीक्स अप फॉर द मुस्लिम्स इन गाजा, दे ट्वीट अबाउट राफा, बट दे आर साइलेंट ऑन हिंदूज इन ढाका, एंड दिस शोज दैट फॉर देम इवन विदेश नीति इज कैलकुलेटेड ऑन द टेबल ऑन द कैलकुलस ऑफ वोट बैंक।
6: सेशल्स की सफल यात्रा के बरक्स भारत की कूटनीति पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ असफल होती दिख रही है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद दोनों देश मोंगला बंदरगाह सुविधाओं के आधुनिकरण और विस्तार परियोजना तथा चिट्टागांग में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन का अधिकार हासिल करके एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की थी, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मोंगला बंदरगाह का ठेका भारत के बजाय चीन को दिया जाना संबंधों में दरार के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी एक संयुक्त बयान ने भारत का विशेष रूप से ध्यान खींचा है। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश का मानना है कि चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना बांग्लादेश के लिए विकास के महत्वपूर्ण अवसर लाएगी। दोनों पक्ष अपनी व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी को और बेहतर बनाने पर सहमत हुए, ताकि नए दौर में साझा भविष्य वाले चीन बांग्लादेश समुदाय का संयुक्त रूप से निर्माण किया जा सके और दोनों देशों व लोगों को अधिक लाभ मिल सके। इस संबंध में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की मुहिम पर बांग्लादेश नाराज है और उसने भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भेजी गई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की फेहरिस्त पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। विश्व प्रसिद्ध क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार से 6 छात्रों के साथ अनशन की शुरुआत की। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट जाकर प्रार्थना भी की। श्री वांगचुक के इस प्रयास से सीजेपी अपने आंदोलन में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 13 महीनों बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद में झूठा बयान देने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप के प्रमाण में श्री सिंह द्वारा 28 जुलाई 2025 को संसद में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
9: और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं।
6: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने इन जवानों की शहादत 1 साल तक सार्वजनिक नहीं की, उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। दो ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को उस समय 6 जवानों की शहादत की जानकारी नहीं थी, या उन्होंने संसद को गुमराह किया। दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दावा गलत है कि शहीदों को पहली बार सम्मान मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 6 शहीदों को पहली बार अब सार्वजनिक सम्मान मिला है। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मंत्रालय का कहना है कि शहीद सैनिकों के नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
5: और अब एक गीत जो मैं आपके लिए एक्चुअली लाना चाहती थी कल, लेकिन कल समय कम था, तो ये गीत वहाँ से लेकर के आ रही हूँ। कोई आप सुनना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास एक संदेश आया है जहाँ पर उन्होंने सिर्फ गीत का नाम लिखा है, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ तो दिलों की डोरियाँ गीत है। अगर आप मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकें तो मैं ज़्यादा अच्छे

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: एनआईटीवी पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें एनआईटीवी चैनल 34 और एसबीएस ऑन डिमांड पर।
6: एसबीएस ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। एसबीएस ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
5: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
7: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
8: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को। और सुनिए, आज है 29 जून, यानी कि एक और दिन में आने वाला है नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्तीय वर्ष। बहुत कुछ बदलता है एक फाइनेंशियल ईयर के साथ। 1 जुलाई वो तारीख होती है जिस दिन बहुत सारे नए बदलाव लागू किए जाते हैं। तो आपके लिए कैसे अलग होगा ये 1 जुलाई से आने वाला नया फाइनेंशियल ईयर, इसी पर एक आसान भाषा में रिपोर्ट, एक आसान भाषा में पॉडकास्ट लेकर के आ रही हैं स्वाति शर्मा। आइए सुनते हैं।
9: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की श्रृंखला
10: मनी मैटर्स।
9: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
11: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। नया फाइनेंशियल ईयर यानी नए नियम। हर साल 1 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में कई चीज़ें बदलती हैं और इस बार के बहुत से बदलाव सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। आपकी तनख्वाह, आपका सुपर और आपके परिवार को मिलने वाली पेमेंट्स और घर के रोज़मर्रा के खर्चे। हाल ही में हमने मनी मैटर्स के नाम से सीरीज की जिसमें हमने पैसों, टैक्स और सुपर से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर आसान भाषा में बात की। आज एक खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि 1 जुलाई से क्या क्या बदल रहा है और इन बदलावों का आपके लिए असल में क्या मतलब है। और इस सब को समझने के लिए हमारी मदद करेंगे टैक्स सर्जन के नाम से मशहूर नितिन सैबी, जो 15 साल से भी अधिक समय तक ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस में टैक्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में। नितिन, शुरुआत वहीं से जहां सबसे पहला फर्क दिखेगा, यानी कि हमारी तनख्वाह जो है 1 जुलाई से नेशनल मिनिमम वेज बढ़कर $26.44 प्रति घंटा हो रहा है, यानी 4.75% की ये बढ़ोतरी है और साथ ही इनकम टैक्स में भी कुछ राहत मिली है। सवाल यह है कि ये बदलाव अपने आप ही लागू हो जाएगा या लोगों को कुछ करना पड़ेगा?
12: आई थिंक सबसे पहले कि आपने जैसे बोला कि मिनिमम वेज जो है वो 4.75% बढ़ गई है, इसका कोई एज सच एम्प्लॉयज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर को ऑलरेडी दे देंगे, वो इंक्रीज करके देनी चाहिए एम्प्लॉयज को। पर हो सकता है कि एम्प्लॉयज को भी मैं बोलूंगा कि प्रोएक्टिव होके अपने एम्प्लॉयर्स से चेक करें कि उनकी मिनिमम वेज बढ़ गई है नई पे स्लिप में. तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, आपने बोला कि इनकम टैक्स कट जो की हुआ है फर्स्ट जुलाई से क्या होने वाला है कि अगर आप 18,201 और $45,000 के बीच में कमाते हो तो पहले इस पे आपको 16% टैक्स लगता था. अब इस पे अगर आप इनके बीच में जितना भी इनकम आप है 18,201 और 45,000 के बीच में अब ये 15% हो गया है. तो ये बाय डिफॉल्ट 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा. तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स होंगी. तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं.
11: जी, सरकार का तो ये कहना है कि साल में इस बदलाव की वजह से $268 तक का लोगों को फायदा हो सकता है. तो नितिन जी, तनख्वाह के बाद बात करते हैं अब सुपर की, जहां इस साल का शायद सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है कि अब तक एम्प्लॉयर्स को अपना सुपर कम से कम हर 3 महीने में जमा करना होता था, लेकिन अब 1 जुलाई से पेडे सुपर लागू हो रहा है. इसके बारे में कुछ बताइए और क्यों ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी खबर है. और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं एम्प्लॉयर्स, उन्हें इसके लागू होने के बाद क्या तैयारी करनी चाहिए.
12: आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है एम्प्लॉयज़ के लिए कि 1 जुलाई से जैसे आपने बोला अब पे से सुपर का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है जिस दिन पे आपको मिलती है उसी दिन आपका एम्प्लॉयर आपको सुपर भी पे करेगा. और इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयज के लिए जो 3 महीने के बाद उनको सुपर की पेमेंट मिलती थी उनको देखना पड़ता था, उनको अब ये टेंशन की बात नहीं है. जैसे पे स्लिप आई आपका अमाउंट लिखा जाता है कि ये आपकी नेट पे है और साथ में सुपर भी बोला जाता है कि कितनी है उसमें. तो साथ में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट सुपर में गई है या नहीं है. अगर नहीं गई है तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ में ही बात करें. तो दैट थिंग इट्स अ गुड न्यूज पेड वे सुपर एम्प्लॉयज के लिए. और एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि इसमें उनको ध्यान रखना चाहिए. पहले तो अपने पेरोल जो भी उनके रन करता है चाहे वो खुद करते हैं चाहे वो अकाउंटेंट से करवाते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि साथ साथ में पे के साथ ही सुपर पे करें. सेकेंडली, कैश फ्लो क्रंच काफी हो जाएगा क्योंकि आगे क्या होता था आपका सुपर का अमाउंट जो ड्यू होता था वो होता था 3 महीने के बाद, बेसिकली 4th महीने में क्वार्टरली बेसिस पे. तो अब क्या है कि आपको साथ साथ में जो आपका सुपर है वो साथ में ही देना है. तो कैश फ्लो की मैनेजमेंट मैं एम्प्लॉयज को बोलूंगा ध्यान रखें, अपने स्मॉल बिजनेसेस को बोलूंगा ध्यान रखें. और मैं हमेशा ये टिप्स देता हूँ कि साथ में ही आप अपना एक बैंक अकाउंट नया खोल लें जिसमें आप साथ साथ में ही GST सुपर और ये सारी साथ में ही डालते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर एवरीवन.
11: जी, ऑस्ट्रेलिया में बता दूं कि करीब 19 मिलियन सुपर अकाउंट्स पर इस नए लॉ का जो है वो असर पड़ने वाला है. अब बात उन परिवारों की जिनके घर नन्हे मेहमान आने वाले हैं. 1 जुलाई से पेड पेरेंटल लीव 120 दिन से बढ़कर 130 दिन हो रही है, यानी करीब 26 हफ्ते. पार्टनर्स के लिए रिजर्व लीव भी 15 दिन से बढ़कर 20 दिन हो रही है. और एक अहम बात कि सरकार की ओर से मिलने वाली पेड पेरेंटल लीव पर अब 12% सुपर भी मिलेगा. ये बदलाव उन बच्चों पर लागू होंगे जो पहली बार जुलाई या उसके बाद पैदा होंगे या गोद लिए जाएंगे. तो अब बात करना चाहूंगी कि जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग में लगे हुए हैं उनके लिए भी तो कुछ बदला है. 1 जुलाई से सुपर में अब पहले से ज्यादा पैसे डाल सकते हैं लोग. इसके बारे में बात करते हैं नितिन जी कि जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए इन बदलावों का क्या मतलब है और कैसे लोग इनका फायदा ले सकते हैं.
12: सबसे पहले तो सुपरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन कैप्स जो आपने बोला वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने राहत दी है इन अ वे कि आपको जो कंसेशनल सुपरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 30,000 से लेके 32,500 कर दिए. तो बेसिकली आपको $2,500 ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रॉम 1 जुलाई 2026 अपने सुपर में डालने के लिए. तो कंसेशनल सुपर आप खुद डालते हो अपनी तरफ से एज अ एम्प्लॉय और उस पे आपको सिर्फ 15% टैक्स लगता है इंस्टेड ऑफ कि आपके हायर मार्जिनल टैक्स रेट पे. तो ये एक खुशखबरी की बात है जो रिटायरमेंट्स के लिए सुपर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं.
11: जी नितिन जी, टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है 31 अक्टूबर. टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 30 जून को. तो 31 अक्टूबर तक क्या इंतजार करना चाहिए टैक्स रिटर्न भरने के लिए, या फिर टैक्स ईयर खत्म होने के बाद जल्दी से जल्दी टैक्स भरना चाहिए, या इनके बीच कोई स्वीट स्पॉट है जिसे फॉलो करना चाहिए? आपकी सलाह क्या है?
12: आई थिंक आपने बड़ा अच्छा बोला, स्वीट स्पॉट बिल्कुल है जी. ना जल्दी ना लेट. मैं बोलूंगा कि स्वीट स्पॉट है आपका सॉर्ट ऑफ एंड ऑफ जुलाई से लेके आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है अगर आप जल्दी करोगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो कि काफी लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं बोलूंगा रुक जाओ, पेशेंस करो। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रीफिल इंफॉर्मेशन काफी डाटा मैचिंग होती है एटीओ के पर्सपेक्टिव से। सो फॉर एग्जांपल वो आपके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपका इंटरेस्ट जो अगर आपने कमाया हो, अगर आपने टर्म डिपॉजिट या वैसे रखा हो बैंक से, वो काफी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन काफी आती है। तो वो प्रीफिल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को, जैसे पीएफआईजी विदहोल्डिंग का भी इंफॉर्मेशन है, इनकम स्टेटमेंट है एंड ऑल दैट, हर एम्प्लॉयर को 30 जून के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। तो आई विल से कि आप जुलाई के एंड से लेके अक्टूबर से पहले पहले, 31 अक्टूबर से पहले पहले तक आप अपनी लॉजमेंट्स कर सकते हैं, अगर आप अपने खुद से करना चाहते हैं या टैक्स एजेंट से। अगर आप टैक्स एजेंट से करते हो तो आपको कुछ और टाइम पीरियड मिल जाता है, जिससे आप 31 अक्टूबर के बाद भी लॉन्च कर सकते हो, पर 31 अक्टूबर से पहले आपने एटीओ को बताना है कि मैंने टैक्स एजेंट के थ्रू लॉन्च करना है।
11: जी नितिन जी, इतनी काम की जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी बात कि यह सब सामान्य जानकारी है, ये निजी फाइनेंशियल सलाह नहीं है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
9: SBS हिंदी की श्रृंखला
10: मनी मैटर्स,
8: और आपके लिए मेरे पास एक गीत है जिसकी रिक्वेस्ट आई है बवाल फिल्म से, दिलों की डोरिया। आइए सुनते हैं, जिसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को, और अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक तो ऑस्ट्रेलियाई टीम मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया की एक जीती जागती मिसाल है। ऐसे में भारतीय मूल के जो खिलाड़ी हैं निशान वेलुपिल्ले, वो किस तरह से युवा खिलाड़ियों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और कैसे फुटबॉल एक नए शौक के रूप में उभर रहा है भारतीय समुदाय में। आइए सुनते हैं नबील हसन की इस रिपोर्ट में।
8: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जुनून हर तरफ छाया हुआ है, और जब हम ऑस्ट्रेलियन टीम को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, ये सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ऐसे मल्टीकल्चरल देश की तस्वीर है जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। आज इस खास ऑडियो पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं युवा पीढ़ी के बीच फुटबॉल के बढ़ते हुए प्रभाव और रुचि के बारे में, खासकर साउथ एशियन माइग्रेंट कम्युनिटीज से आने वाले उन लोगों के संदर्भ में जिनके लिए अक्सर क्रिकेट ही पहला पसंदीदा खेल होता है। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं सतेंद्र संगेरा, जिन्हें सैट संगेरा के नाम से भी जाना जाता है। सैट एक अनुभवी फुटबॉल कोच हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल के कई स्तरों पर काम किया है। पारंपरिक आउटडोर फुटबॉल से लेकर फुटसल तक उनका गहरा योगदान रहा है, और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कई टूर्नामेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लीड किया है। सैट, सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुभव के हिसाब से कम्युनिटी लेवल पर फुटबॉल सीखने और आगे बढ़ने के लिए कैसे अवसर उपलब्ध हैं?
9: ग्रास रूट फुटबॉल सब कम्युनिटीज में है हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए कि वो वहाँ जाके खेलन और सीखन के फुटबॉल कैसा खेला जाता है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिटनेस वास्ते और खेल वास्ते। हमारी इच्छा तो यही है कि बच्चे जितना भी खेल सकते हैं वो खेलें, इसलिए कि उनकी देखभाल के लिए और उनकी हेल्थ के लिए और माइंडसेट के लिए ये खेलना और एक्सरसाइज करना और दौड़ना बहुत जरूरी है, और उसको सोशली भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट होता है बच्चों का। सो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटीज में, मेलबर्न में, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से लेकर बहुत ग्रोथ हो रही है फुटबॉल में, एंड कम्युनिटी क्लब्स बहुत हैं जो चाहते हैं कि नए बच्चे आके खेलें और सीख। बहुत बढ़िया बात है ऑस्ट्रेलिया ये पेश कर रहा है हमारी कम्युनिटीज के लिए।
8: अच्छा, कई साउथ एशियन माइग्रेंट परिवारों के लिए सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल जैसे अन्य खेलों से परिचय और रुचि बढ़ना भी एक बदलाव का हिस्सा है, इसमें आप पेरेंट्स की भूमिका को कैसे देखते हैं?
9: पेरेंट्स सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे, हमारी बेटी ये सब खेलें. Or what we as parents like to see is our children grow up to be a part of their time. So bachche jab football khelte hain, jahan tennis khelte hain, cricket khelte hain, jahan jo bhi khelte hain, hame waqt milta hai unke saath guzarne ka, aur wo waqt bahut keemti hai, karke memories create hoti hain. To ye memories bahut zaruri hai ki hum hamare bachchon ke saath jaye aur aage waqt guzare. फुटबॉल में, जहाँ क्रिकेट में, जहाँ AFL में, जहाँ स्विमिंग, पियानो में, जो भी है, हमें जरूरी है बच्चों को भी देखना चाहिए कि उनको क्या पसंद है. सो वी कैन सपोर्ट देम एज पेरेंट्स. बच्चों को मेसी अच्छा लगता है और रोनाल्डो अच्छा लगता है, जहाँ सॉकरूज अच्छा लगता है, तो फिर वो चाहेंगे कि वो खेलें. कहाँ खेलें? क्लब में. और जब बच्चे शौक दिखाते हैं और खेलते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है, तब माँ बाप पुश करते हैं, पुश नहीं, सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को ये अच्छा लगा, हम उसको और मौका दें.
8: इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में निशान वेलुपिल्ले ने भी अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, जो इंडियन ओरिजिन से आने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक है. ऐसे खिलाड़ियों का युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है?
9: अमेजिंग है ये बात. ये जब हमें हमारा अपना दिखाई देता है इस लेवल में, पहले से ही हम तो क्रिकेट के बैकग्राउंड में से हैं. पहले ऐसा होता था कि हम यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, सब सोचते थे कि हम क्रिकेट प्लेयर हैं. बट उनको अब टाइम बदल गया है और लोगों को मालूम पड़ गया कि हिंदुस्तानियों के भी, और नॉट जस्ट हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से लाके बांग्लादेश से लाके नेपाल से लाके और श्रीलंका से लाके सब को फुटबॉल आता है. और हमने दिखा दिया यहाँ पर, अब हमारे बच्चे सब अकेडमीज में खेलते हैं और क्लब्स में खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. सिर्फ बॉयज नहीं, पर बेटियां भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एट द मोमेंट. एंड ये दिस इज गुड न्यूज, एंड ये हमें सपोर्ट करना चाहिए.
8: आइए अब सुनते हैं निशान वेलुपिल्ले के विचार, जो एंग्लो इंडियन और श्रीलंकन तमिल एंसेस्ट्री से जुड़े हैं. निशान ने सॉकरूज के लिए 2026 फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू किया है. उनके इस सफर में उनके माता पिता के लगातार सहयोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है.
10: I guess adapting to the world in Australia and learning English and, you know, everything that's required. But also, you know, it's just a lot of days where they're driving you to training, and, you know, they come back from long, hard days of work, and they're willing to put your dream first. And yeah, I think, you know, I'm forever grateful for that. And yeah, like I said, if I can repay them with a World Cup appearance, I'm sure they'll be happy with that.
8: ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल देश है और नेशनल फुटबॉल टीम में इसकी झलक साफ दिखती है, जहां अलग अलग देशों से आए हुए खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हुए अपनी पहचान बनाते हैं. निशान इस डाइवर्सिटी और टीम एनवायरनमेंट के अपने अनुभव को भी हमारे साथ साझा करते हैं.
10: आई थिंक वी वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द वन कंट्रीज वेयर, यू नो, आई थिंक यू लुक अक्रॉस द बोर्ड, वी गॉट, यू नो, ऑल दीस डिफरेंट, यू नो, बैकग्राउंड्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया एंड आवर स्क्वाड रियली स्पेशल. You know, with different cultures comes different personalities as well, and I think that's why, you know, we're called a family here. And yeah, I think you know, it showcases on the field as well, and yeah, I think you'll see that on Saturday.
11: One final one for me. You talked about your Tamil heritage a little bit. being the first, what does that mean to you, that being the first to play in a World Cup from Tamil background? And also, are you hopeful that there'll be more Tamils coming along after you?
10: Yeah, I think you know, yeah, it's proud moment for me and my family, and I think any culture, you know, it's I hope there's more, yeah, of course. And you know, I don't really discriminate of any culture. I just hope that, you know, everyone's allowed to play the game, and whoever makes you know, into a World Cup, I'm more than happy for them. And yeah, it's a proud moment for me and my family, but yeah, I'll try and yeah, I guess make them proudest.
7: Mm-hmm. बस इतना ही आज के SBS हिंदी के शो पे, फिर होगी मुलाकात। आपको इस गीत के साथ छोड़ करके जा रही हूँ। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।

0: SBS South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

0: तेरे भाई ने सबको पीटा,
1: भगा भगा के।
0: आपके लिए आए स्पेशली।
1: हाजी हाजी।
0: कर्मा और रफ्तार, ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे।
1: कैसे भाइयों?
0: और उनके लिए जो अभी भी स्कूल में है।
1: बड़ो और बड़ो।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Now Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

हार के वो जा रहा है कोई शबगम पुकार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर के।